0: ले जे माले शाच अगर ले
1: जे गेरगेन बाचन लर ले
0: नंग हरी थंजन अगर ले
1: चोपो छोसो छो छेचो नाचो सी पी गाच लेंचन जो जो की ट्रिंचे जो

0: 왜 두포초 데모
1: 데모 데모
0: 야 두포게 데궁게 참다네 고트기오 누거 가정 자키라 군초차바 삼쿠지글랑비 초파세르군 고드고넨데 스즈갈릭 치커지
1: 오 데다 좀 추마카니
0: 과든치
1: 제 야 참이 로마다 천동아 디냐 신타 토모 로마
0: 阿拉曼扎巴拉苏哈阿拉曼坦加丹切朗苏拉苏会卓木坦加拉扎西迪拉克坦德拉西斯克尼亚阿爹蒂纳空齐勇达达达德齐金达姆纳齐勒钦德尼亚姆斯吉格尤比蒙德西哦瓜真西瓜真西达尼尼凯尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼尼 अरे माकू था गुंत
1: ओ मारे ते अरे वो अल्लाह सेवा चाहिए यू को
0: अरे चो अल्लाह सेरवा सगत गुनी चो न्यंग शेरा ताजो गाची ती कर के यंग योना चोरे वाचन तक उठ गिना चुनरे
1: ओ या चिंगा शिगे में कपाल चुमोगो
0: लेकिन ना चो शंखा के चुपड़ी में ने चो चंचमा चिंगा अल्लाह जाजी ने से के चंचमा यंग जेंसु शे को ला
1: जगह जंग
0: गुंबु अरे
1: या तना तो वो को अलमुसो को वो को सीधों को अल्ल ने द काटोती चुतों जरी वाले
0: या तना तंगा जिम्मा के निचे नंगा अलमुसो के सीले ने द काटो सेर गुनुते टोपोचे रिवाजन तक उठ गया
1: कोटिंचे
0: या चो मेक मंथ तंगा चुलें संदला नियंबर गैसे शेती नाने को कर देमु
1: या देमु
0: या वे टोपोचे देमु
2: नौका नौनी ना वाचिस का सोमुझ रोचु छेत खातो कर के लक्ष्य करनी को
0: अरे अरे अरे
2: अरे ता टीम थोड़ी ता अंडे यंग के यंग यंग चुकर में यं
0: अरे
2: को दोरा को फंसू चेंग का सेटा को ताशिया नाम जो फंसू को यं अंडे वाचिस का सोमुझ रोचु छेत खातो कर के लक्ष्य करनी
0: अरे अरे तीना कचू यंग दर्ता डा दर्
2: अरे
0: ता तुम जी मुना ता लेंग सावरी ना तुम रहा ना ना दंड से चीते हम तुम को ता मच्छ को ता नौका वाला ता तो जी मार नहीं देना ऐसी तो जी मार अरे रे तीना तुम जी मार लेंग से नंगा अंदी लेंग सहरवाज़ा आज हम सोचे रिवाज़न तक उठ गिला को ओ या या तो पुनः बात ही ना चंदनी गाती न्याम खचिक गाजं जाखी राश कौन चोस जब सामकुची के छोपा सेर गुनुगो दोनें दे संजीनां जुगल

ओ लक्ष्मण तगता माची चरण के सीना चांस का चांस सीना काम कर चांस तुम लोगों को कंडी तंग रर्म डाउन हों तो जंप सोंग डाउन स्टंग जापान शेटर दे जो टाइम ये ना रंग के यंग तग ताम सुन जांचन जेको ताम के पास चपाक ताम जोंग रामो वो के अक्सम मंच द अचिन क्रीड जाचा अचिन चोमा चोम अचिन पागों नाम तक मार्कम दोस्त मियां चिड